संत गुरु अर्जुन देव जी महाराज हुण इह तां गुरु नानक दी मेहर है कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज गुरु नानक दा रूप बन गए पर पृथ्वी चंद जिन्हां दा सुभाव माया वाला ईरखा वाला दुबदा वाला सी और महादेव उन्हां नूं किसी चीज दे नाल कोई मतलब नहीं सी। वड्डा भरा पृथ्वी चंद हर वेले गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाल ईरखा करिया करदा सी। एक दिन दा जिक्र है गुरु अर्जन देव जी महाराज दे तर्मस पत्नी माता गंगा जी जिन्हां ने वेड़े दे विच कीमती कपड़े कीमती समान रखे है धुप लवाउण वास्ते कपड़िया नूं पृथ्वी चंद जी दी घरवाली करम कौर उसने जद छत ते चढ़ के माता गंगा जी दे घर वल देखिया रेशमी कपड़े गहने कीमती समान ते सड़ पल के कोले हो गई। करम कौर ए सारा कुछ देख के बर्दाश्त ना कर सकी मंजी ते आके लम्मे पै गई। पृथ्वी चंद बाहरों आए घरवाली नूं कहन लगे करम कौरे उदास क्यों है। करम कौर कहन लगी पृथ्वी चंद नूं अगर तुसी अपने पिता दा कहना मन्या हुंदा गुरु रामदास जी दा ते तुसी गुरु बनदे और ये सारा कुछ तुहानूं मिलना सी तुसी पिता दी आग्या नहीं मन्नी सेवा सिमरन नहीं कीता ते ए गुरगद्दी तुहानूं नहीं मिली पर तुहाडा छोटा भरा गुरु अर्जन साहब जिन्हां ने सेवा सिमरन कीता हुक्म मन्या ते गुरु नानक दी गद्दी दे मालक बन गए। पृथ्वी चंद करम कौर दी गल सुन के हसे। करम कौर पृथ्वी चंद नूं अपने घर दी छत ते लै गए और कहन लगे ऐ देखो तुहाडे छोटे भरा गुरु अर्जुन साहब दा घर किन्ना कीमती समान होया काश ये सब कुछ साडे कोल हुंदा। पृथ्वी चंद हस पए और हस के उची सारी

बड़ी धूड़ उड़ रही है, कौन आ रहा है? ता सेवका ने कहा, बाबा जी गुरु के महल आ रहे ने पाव, गुरु अर्जुन साहब दे धर्म सुपत्नी आ रहे। ता बाबा बुढ़ा जी ने सहस बाबचन कीता, गुरु पिया नू किधरों भाजना पै गया। माता गंगा जी आए, लंगर छकाया, पर बाबा जी ने पुत्र वास्ते कोई अरदास ना की थी। माता गंगा जी उदास होके वापस चले गए।

नहीं, जदू किसे को लो कुछ मंगी दे ते निम्रता विच और न्यो के जाई दे। अमृत वेले उठो बाणी पढ़ दे हुए आप हत्थां दे नाल प्रशादा बनाओ

और बाबा बुढ़ा जी, आज आप अपनी जगह तो उठ के अगा हुए और पाजी के माता गंगा जी दे सिर तों।

मैं तेरे रस रस गुण गाऊं, मन करके तेरी मैं शिव सला करूं, मन करके तेरी भक्ति करूं। एक हन गुण गाउने, एक है रस रस गुण गाउने। गुण गाउंदिया तो भाई कई मेरा मन गैर हाजिर भी हो सकता, पर जिन्हां ने तेरे रस रस गुण गाए हन उन्हां नूं तां आपे दी भी सुध नहीं रही, उन्हां नूं तां अपना आप भी विसर गया। इसलिए ये अमोलक दात है कि मैं तेरे रस रस गुण गावां, तेरे विच गुआच जावां, तेरे गुण गाउंदिया

मोरे हृदय बसो गोपा। गोपाल भी उना दे हृदय विच वसदा भई जो उस दे रस रस गुण गाउंदे हन। अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दा निवास भी उना दे हृदय ते ही होया जिन्हां ने उदे गुण गाए। एक दर्शन करना है, एक दर्शना तो रस मानना है। दर्शन तो सारे ही करते हैं पर दर्शना तो रस मानना एक अमोलक दात है, एक अमोलक वस्तु है। भाई साहब भाई नंद लाल जी जो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे 52 कविया विचों श्रोमणी कवि सन, आप बड़े उग्र तपी सन। पता नहीं कितने जन्मां दी आप दी तपस्या सी जिस दे सदके रसक बैरागी दुष्ट दमन दाता गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जैसा उन्हां नूं गुरु मिल गया। एक समय दा जिक्र है कि धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह भाई नंद लाल जी ते अति प्रसन्न होए ते कहन लगे नंद लाल साडा जी करदा कुछ मंग। किडियां खुशियां होंदियां हन जदों पिता आप अपने पुत्र नूं कह रहा होवे बेटा तू बड़े चंगे कर्म कीते हन, तू बड़े चंगे कम कर रहा है ते मेरा जी करदा तू कुछ मंगे। अज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने कहा नंद लाल साडा जी करदा तू कुछ मंग। तां भाई साहब जी दे नैन कटोरे भर आए, ओ मेरा दे साईं ओ बख्शिशां दे दाते इस कीट नूं कह रहे हो कुछ मंग। हां तैनूं ही तो कह रहे हां तां फिर जे कृपा करन लगे हो तो फिर मेरे ते एक कृपा करो के दीते अंबरा लगजते दीदार बख्श। ए दीदे ए जो अखां हन ए आपदा दर्शन तो कर रही हन पर इना विच रस नहीं है, वो रस तेरी कृपा द्वारा प्राप्त हो सकता है। इसलिए जे टुटे हो तो दीदे अंबरा लज्जते दीदार बख्श, इना नेत्रां विच लज्जत बख्श तेरे दर्शना तो पूरन आनंद मान सकन। सीना अंबरा मगज ने इशरार बख्श, इस सीने विच मेरे हिरदे विच तेरे सिमरन भी भुख लग पवे। क्योंकि भुख ना लगे तो कितने भी स्वादिष्ट पदार्थ सामने पए होन वो चंगे नहीं लगते, ते जे भुख लगी होवे तां साधारण पदार्थ भी बड़ा स्वादिष्ट लग रहा होंदा है। उच्चारण करो श्री। इसलिए भाई साहब कहंदे हन हे कलगीधर पातशाह जे तुठे हो तां सच्चे नाम दी तेरे सिमरन दी मेरे हिरदे विच भुख लग पवे। साचे नाम की लागे भूख उत भूखे खाए चलिए दुख। जिन्हां नूं सच्चे नाम दी भुख लग गई भाई जन्मां दे कीते होए पाप उन्हां दे मिट गए। क्योंकि सच्चे नाम दी जिथे भुख है उथे पाप ठहर ही नहीं सकदे। उचारण करो श्री। इसलिए भाई साहब ने ए दात मंगी दीदा अंबरा लज्जते दीदार बख्श, सीना अंबरा मगज ने इशरार बख्श, ई दिले बिरयाम मारा शोक दे। भाई साहब कहंदे हन कि मेरा दिल विषय विकारां दी अग विच पुज चुका है ते तेरी कृपा होवे तां प्रेम मिल सकदा है ना, तां प्रेमा भगती मिलदी है जे गुरु दी कृपा होवे। इसलिए इस पुज चुके हुए दिल नूं प्रेम ला मैं तेरे चरणां विच जुड़िया रहां, मेरा मन तेरे चरणां विच जुड़िया रहे। ए शरीर देश होवे परदेश होवे घर होवे बाहर होवे दुख विच होवे सुख विच होवे हे वाहिगुरु मेरा मन तेरे चरणां विच जुड़िया होवे।
दीदा अंबरा लज्जते दीदार बख्श, सीना अंबरा मगज ने इशरार बख्श, ई दिले बिरयाम मारा शौक दे, दर गलूयम बंदगी दा तौक दे। तौक कहंदे हन पटे नूं, ते भाई साहब नंद लाल जी कहंदे हन मैं तेरे दर दा कूकर हां, ते ओ कूकर मालक दा फवांदा है जिस कूकर दे गल विच पटा होवे। आख्या मेरे गल विच पटा पा के मैनू आप दा बना ले। ए पटा केड़ा है जो भाई साहब नंद लाल ने कहा, आख्या बंदगी दा पटा मेरे गले विच पा, श्वासा दे अंदर बार आंदियां जांदियां मैं जपदा रहा श्री वाहे गुरु। आख्या होर भी कुछ मंगना है, ता भाई साहब कहंदे ने कुछ होर भी मंगना है, क्योंकि आप तुठे हो, आपने कहा कुछ मंग मैं तदे ही तो मंग रहा। आख्या मंग भाई होर की मंगदा है, ता भाई साहब नंद लाल जी कहंदे ने हिजर मारा आरजूए वसल बख्श, तेरे मिलन दी शिक मेरे हिरदे विच वसी रहे, क्योंकि जिस हिरदे विच ईश्वर दे मिलन दा प्यार नहीं ओ हिरदा हिरदा नहीं है, ओ ता एक शमशान भूमिका है। जिस तरह शमशान भूमिका विच मुर्दे जलदे रहिंदे हन, आख्या ओ हिरदा भी ऐसा ही तपदा रहिंदा है जलदा रहिंदा है जिस हिरदे विच साईं दे मिलन दा प्यार नहीं है। उचारण करो श्री हिजर मारा आरजूए वसल बख्श, ई खजाने चश्म मारा फजल बख्श, हर सरे मुयम जुबां कुन आज करम। भाई साहब कहंदियां हे गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी प्रसन्न होए हो तो फिर जितने मेरे शरीर दे रोम हन इन्हां नूं जीभा ला दिओ। हर शरीर दे नाल 7 करोड़ रोम हुंदे हन, ते भाई नंद लाल जी कहंदे हन कि हे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह क्योंकि असी कलयुगी जीव हां ते कलयुगी जीवां दी उम्र भी छोटी है, दिन रात भी छोटे हन, ते मैं चाहुंदा हां थोड़े समय विच मैं तेरा बहुता जस करां, वध तों वध तेरे गुण गावां। इसलिए मेरे हर शरीर दे रोम ते जीभा ला दे, ते फिर एनिया जीभा नाल मैं की करां। आख्या हिजर मारा आरजूए वसल बख्श, ई खजाने चश्म मारा फजल बख्श, हर सरे मुयम जुबां कुन आज करम, तां बिगोए दुविस्व हकरा दम बादम। दम बादम मैं तेरे गुण गावां, ते की मंगा मैं ए मंगा तेरे कोलों के रस रस गुण गावो, ठाकुर के मोरे हिरदे।

आप केस सुका रहे हो, अमृत वेले दे दीवान दी समाप्ति होई, अपने स्थान ते आके आप केस सुका रहे हन, ते सूरज दी पहली किरण जदों निकली ते आप दे केसां दी तार ते जदों पई ते भाई साहब जीतां विचों वेख रहे सन ते विस्माद हो गए उस केसां दी तार नूं वेख के। ते आप कहंदे ने दीन दुनिया दरक मंदे, ए दीन ते दुनिया तेरी जुल्फां विच वधे होए हन, इउं मालूम हो रहा। तेरे एक रोम तो मैं दो जहान वी वार देवां तां वी घट हन। दीन दुनिया दरक मंदे आपरी रुख सारे मां, हर दो आलम कीमते यक तार मुए यारे मां। मान में आरे मुताबे गमजे मई गाने यू, मेरे पास केड़ी वस्तु है जो मैं तेरे तो वारा। मान में आरे मुताबे गमजे मई गाने यू, गमजे मई गाने यू। अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल जां गुर देखा शमन। मेरा तन मन निहाल हो गया, मैं सदके हो जावा तेरे एक एक केसा दे रोम तो, जिथे मेरी नजर जा टिकी है। तो भाई जो अपने गुरु तो सदके जांदे हन, बलिहार जांदे हन, उना दा ए लोक भी सुखी होंदा है, पर लोक भी सुहेला होंदा है। तो भाई साहब कहंदे न हर दो आलम कीमते यक तार मुए यारे मां। मान में आरे मताबे गमजे मै गाने ऊ, यक निगाहे जा फिजाए बस बवद दरकारे मां। गाहे सूफी गाहे जाहद गाह कलंदर में शवद, रंग हाय मुख्तलिफ दारद बुते ऐ यारे मां। राजन में तू राजा कहिए भूमन में भूमा, ठाकुर में ठकराई तेरी कौमन सिर कौमा। पिता मेरो बड़ो धनी अगमा, उस्तत कौन करी जे करते देख रहे बिस्मा। बस तेरी उस्तत असी इसलिए करदे हां कि तेरे चरणा नाल साडी सांझ बन जावे, साडी चोली ए दात पा दे के रस रस तेरे गुण गाउंदे रही।

एक मुसलमान वीर ने कलम चुकी ते तवी दा हाल लिखना शुरू किया। गुरु अर्जन प्यारे क्या खेल रचाए, ओ कहंदे ए उनां दा खेल सी। कौन है चंदू, इतिहासकार ने इतिहास लिखदियां लिखदियां चंदू ते दोष दिता, जहांगीर ते दोष दिता, लेकिन धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दी दास ने बाणी पढ़ी, किसे पंक्ति विच भी किसे नु उलांबा नहीं दिता। एक बारी आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाह। किसे भी थां ते कोई उलांबा नहीं दिता। कहंदे ने के गुरु अर्जन प्यारे क्या खेल रचाए, ते तवी किस तरह दी सी। अंगारों की मानो तपी लोह पर ही, जो बैठे हुए हैं समाधि लगाए। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जदों देग विच आसन लाया, हजूर कहंदे चंदू तैनू पता है एक गल दा, एक सोने दा ढेला, एक सोने दी डली किसे पुरुष ने चाया कि इस डली दे 100 टुकड़े कर दें। उसने उस डली दे 100 टुकड़े कर दिते। हसूर कहंदे ने चंदू 100 टुकड़ियां तो बाद ए दस उसकी कीमत कितनी कटेगी। चंदू लाजवाब सी, किवें दसे एक डली दे 100 टुकड़े कर दिते, टुकड़े सामने पए ने, है ता सोना पर सोने दे टुकड़े हो गए। ए होई ता पावन शरीर, तख्त ते बहण वाला अज चारे पासे शरीर ते छाले हो गए, टुकड़े हो गए शरीर दे, सोने दे टुकड़े हो गए। चंदू चुप है। हसूर कहंदे चंदू, जे किसे शरीफ नूं मुसीबत विच पा दिता जाए, दुखां दियां दीवारां उहदे आसे पासे बना दित्तियां जाण, उहदी शराफत कितनी क कटेगी। तां गुरमुख किसे गुरमुख ने लिखिया, शरीफों की मुसीबत में शराफत कम नहीं होती। की होया जे तू तवी ते बिठा ले, की होया जे तू उबलती देग विच बिठा ले, की होया जे तू सिर ते रेत पाई, की होया जे शरीर ते छाले हो गए। शरीफों की मुसीबत में शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े के कीमत कम नहीं होते। भला कदे सोने दी भी कीमत घट हुई, 100 टुकड़े नहीं, भावें कोई हजारों टुकड़े कर देवे कीमत नहीं घट हुंदी।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਕਾ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਵੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਮੀਰੀ ਕੀ ਤੋ ਐਸੀ ਕੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੁਟਾ ਬੈਠੇ, ਫਕੀਰੀ ਕੀ ਤੋ ਐਸੀ ਕੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਪੇ ਆ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਆਓ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਵੇ।

पर पिता गुरु रामदास ने ना ता कोई सुनिया भेजिया ना ही वापस बुलाया ना कोई चिट्ठी पाई मन तड़फदा अगे ता एक मिंट भी

पर रस्ता खाली दिखिया, कोई सुनिया लेके नहीं आया, ते अखां विच जल भर आया, अथरू किरण लग पे कि हाली भी कोई सुन

मेरी एक सच्ची सिखिया ले लो। आख्या महाराज केड़ी सिखिया ओ, साहब जी क्यों दे हन जेड़े कर्म तुसी कर रहे हो, जे चंगे कर्म कर रहे हो ओ भी तुहाडे लिखे जा रहे, जे मंदे करोगे ओ भी लिखे जा रहे।

गौड़ी चेती, शब्द भी गौड़ी चेती श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच उसी राग विच ए शब्द उचार रहा है भगत जी ने। ऊपर सिरलेख है गौड़ी चेती भगत कबीर जी का।

सफल हो मन में लायो पाओ सुख सहज आनंद गाना गुरबाणी गावो पाई सुख सहज आनंद गाना तब जपते हैं दुख जाए नानक नाम जपत सुख।